0: जी जी, अभी उधर हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, हमारे सारे स्पॉन्सर्स के स्पेशली हुआ सपोर्टिंग स्पॉन्सर्स जो रामायण के साथ आ रहे हैं, तो चलो एक बार फिर से हम सभी को याद कर लेते हैं बारी बारी से हमारे जितने सपोर्टिंग स्पॉन्सर्स हैं।
1: जी हाँ, हमारे सपोर्टिंग स्पॉन्सर्स है टच एंड ग्लो। अगर आपको अपने स्किन का ख्याल रखना है सो यू नीड टू गो टू टच एंड ग्लो। पोदीचोर, अगर आप साउथ इंडियन खाने के फैन हो, स्पेशली अप्पम, बिरयानी, डोसा, इडली, चटनी एंड मेनी मेनी मेनी मोर, आपको जाना है पोदीचोर। अंशूज रियल फ्रूट आइसक्रीम, आंटी के आइसक्रीम की बात ही अलग है। एंड वी आर कंस्ट्रक्शंस, साथ ही साथ एमसी केयर भी है एंड ब्लॉसम डेंटल। प्रिया नारंग जी भी अभी हमारे साथ ऑन बोर्ड है। सो आप सबको हम थैंक यू कहना चाहते हैं रामायण को सपोर्ट करने के लिए।
0: और रामायण के फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने वाले, याद रखिए फोटोग्राफी के लिए तो जेके इमेजेस। आपको भी अगर अपने कुछ फोटोशूट कराने हैं, फैमिली फंक्शन से कुछ भी हो, तो जेके इमेजेस ये नाम जरूर याद रखिए। और इनका क्वालिटी ऑफ काम आपको देखना है तो आपको इनका पेज जो है ये जाकर चेकआउट करना चाहिए। इनके साथ साथ वीडियोग्राफी के बारे में हम बात करते हैं, पीपी प्रोडक्शन, प्रतीक पटेल जी। प्रतीक जी, आज आप और रितु लगता है बिजी है, शायद बाद में हमारे साथ शामिल होंगे, तो वीडियोग्राफी के लिए डेफिनेटली आप पीपी प्रोडक्शन इनको संपर्क कर सकते हैं।
1: हमारे सोशल मीडिया जो पार्टनर्स है जो रामायण का प्रमोशन कर रहे हैं, ये है इंडियन सोशल कल्चरल क्लब ISCC, इंडियन सोशल कल्चरल क्लब का दिवाली का डेट्स भी सून अनाउंस होगा, सो वॉच द स्पेस फॉर दैट। साथ ही साथ DNZ डिजीवर्स न्यूजीलैंड, विच इज बेस्ड इन ऑकलैंड, पर न्यूजीलैंड के हर कोने का ये डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है। तो अगर आपको भी डिजिटल मार्केटिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट DNZ डिजिवर्स न्यूजीलैंड। हमारे मीडिया पार्टनर है प्लेन्स मीडिया, जिस तरह आप पीछे देख रहे हैं हम जहां से स्टूडियो से काम कर रहे हैं, हमारे रिकॉर्डिंग पार्टनर भी है प्लेन्स मीडिया।
0: इसके साथ साथ हमारा रामायण का जितने पोस्टर आप देख रहे होंगे, अराउंड क्राइस्टचर्च भी आप देखेंगे, ये प्यारा सा पोस्टर, और ऐसा ही आपको कुछ ग्लॉसी ग्लॉसी या ब्यूटीफुल प्रिंट कराना है तो प्रिंट प्रो ये नाम जरूर याद रखिए। नीरव भाई, आपको भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे, आपके फैमिली को हम थैंक यू कहना चाहेंगे फॉर कमिंग ऑन बोर्ड एंड सपोर्टिंग रामायण अ टेल ऑफ टू किंग्स एज अ प्रिंटिंग पार्टनर।
1: जी हाँ बिल्कुल। अब आप जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें हम जो रामायण लेकर आ रहे हैं जो हो रहा है 19 सितंबर 2026 को, ये एक म्यूजिकल डांस ड्रामा है, विच मींस हम रामायण को डांस के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं। ये अराउंड 2 आवर्स का शो है, 2 आवर्स से थोड़ा ज़्यादा होगा, 2 आवर्स का शो है, ये हो रहा है 19 सितंबर को। आप ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। आज पहली बार हमारे साथ हमारे बच्चे, विच इज़ हमारी वानर सेना, जुड़ी थी प्रैक्टिस के लिए। आज हमारा पहला संडे प्रैक्टिस था
0: एंड
1: बहुत मजा आया। सो थैंक यू टू ऑल द पेरेंट्स जो अपने बच्चों को आज लेकर आए थे। हमारे परफॉर्मर्स काफी ही हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड क्राइस्टचर्च वी वुड से यू शुड नॉट बी मिसिंग दिस वन। सो रामायण देखने के लिए, अपने बच्चों को सिखाने के लिए, रामायण का मतलब है गुड ओवर ईविल। सो अगर आपके बच्चों को ये सारी चीजें सिखानी है, बुक योर टिकट्स नाउ ऑन इवेंट फाइंडर, गो ऑन इवेंट फाइंडर, EVENTFINDA, टाइप अप रामायण एंड आपको मिल जाएगा रामायण का, एंड देन क्लिक ऑन बाय टिकट्स एंड वहां पे सारे ऑप्शंस हैं।
0: यस, और इसके साथ साथ सुनैना मुखर्जी अभी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, आपको भी हम याद कर लेते हैं जितने लोग हमारे साथ है। वंस अगेन एक स्पेशल शाउट आउट देना चाहते हैं क्राइस्टचर्च मेंस प्रिजन, नीरज जी आप दोस्तों के साथ आप सुन रहे। चले अगला जो गीत है आप सबको इसमें हम शामिल कर लेते हैं। बाकी जितने लोग हमारे साथ हमारे फेसबुक फ्रिक्वेंसी पे शामिल हो रहे हैं, अगर आपको कोई गीत सुनना है तो फ्लिक अस अ मैसेज, हम प्रोग्राम के दौरान We will play that. You're listening to Radio Kajal Local only on
1: Plains Media 96.9.

0: वेलकम बैक टू रेडियो KJ लोकल। आप सब हमें सुन रहे हैं प्लेन्स मीडिया 96.9 पे।
1: जी हाँ बिल्कुल, और ये जो गीत आप सुन रहे थे इसमें हम आप सभी को याद करना चाहते हैं। कुछ लोग हमारे साथ उधर फ्रिक्वेंसी के साथ साथ फेसबुक लाइव में भी जुड़ चुके हैं, आप सभी को हम बारी बारी से याद करते हैं। सॉरी, मैं जब आप लोगों का नाम देखता हूँ लाइव पे आप आते हो तो ये हमारा फर्ज बनता है कि आपको एक्नॉलेज किया जाए। शायद कुछ लोग सोच रहे हैं हमें लाइव में गया हमें एक्नॉलेज करेंगे, यस, क्योंकि आप अपना समय निकाल कर यू ज्वाइन अस ऑन आवर लाइव, सो फर्ज बनता है भाई। और रितु पटेल जी पीपी प्रोडक्शन, और रितु हम वी मेट रितु एंड प्रतीक लास्ट नाइट, एंड स्पेशली रितु जी और प्रतीक जी के जो प्रिंस पुत्र है, सच अ क्यूटी। सो थैंक यू रितु जी, हमें मालूम है कि देखो हम तो बिजी हो जाते हैं फिर भी आपने टाइम निकाल कर आया, और इसी बहाना दिलीश के बर्थडे के बहाना वी ऑल्सो गॉट अ चांस टू मीट देम। और सरिता सिंह जी, हेलो सरिता जी, आप कैसे हैं जी? भी वैसे इवेंट का ओवरऑल बात किया जाए, कैसा आपका स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे अप टिल नाउ, हाउ इज द जोश?
0: थोड़ा सा डाउन है लेकिन सुपर एक्साइटेड। आई थिंक हमारा फ्राइडे से लेकर अब तक काफी बिजी चल रहा है ना।
1: हमने आपको बताया ना एनर्जी कैसा, वो गिव यू एग्जांपल्स ना, एनर्जी लेने के लिए जो फुल टाइम काम हम करते वो क्या करते थे, तो अगर आपको चाहिए तो विल आई कैन अरेंज इट।
0: क्या करते थे
1: जो सेलिब्रिटीज वो क्या करते थे?
0: एंड हमारी अम्मा है इसमें, अम्मा यू नो जितने भी लोग सुन रहे हैं हमें कांच की चूड़ियां बहुत पसंद है, सो अम्मा थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। दो दिन से हमने लगातार यही पहना हुआ है एंड आई एम लविंग इट, सो थैंक यू सो मच अम्मा। सरिता सिंह जी कह रहे हैं हेलो बोथ ऑफ यू, आज मैचिंग नहीं किया आप दोनों ने बट ब्यूटिफुल। एक्चुअली मैचिंग था नहीं, इन्होंने लाल कुर्ता पहना हुआ था लेकिन सुबह से
1: दो तीन इवेंट में यही हो गया सरिता सिंह। चलो देखो लोग नोटिस करते हैं, पर हाँ आज क्या हुआ कि हम जब स्टूडियोज के अंदर आए हमारे पास लाल कुर्ता था, बट आई वॉन्टेड समथिंग जिसमें हम बहुत ही कम्फर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ से निकल कर हमें

0: भी जाना है तो चेंज करने का समय नहीं मिलता, हमने सोचा चलो, पर मुझे पता था कोई ना कोई बोलेगा, चलो आपने नोटिस किया, थैंक यू। ये पता है कि चलो हमारे लिसनर्स हमारे साथ जो जुड़ जाते हैं, जितना प्यार हम आप लोगों से करते हैं हमें पता है उतना प्यार आप हमसे भी करते हैं। तो यस, इवेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, बैक टू बैक हो रहा है। और जी आपको स्पेशली काम के साथ आपका, तो मेरा तो चलो एक सर्टेन टाइम के बाद मेरा माइंड ऑफ हो जाता है, आई मीन टू वॉचिंग स्पोर्ट्स, पर जीबीजी का माइंड ऑफ नहीं होता है। तो जी भी आज अगर जब हम रामायण का जैसे वापस जाते हैं, क्योंकि संडे शो रामायण के बारे में है, हम अपने स्पॉन्सर्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे जो स्पॉन्सर्स ओकलैंड से हैं, लोग उसके साथ शेयर करें कि कैसे ऐसा हुआ कि ओकलैंड का एक स्पॉन्सर केम ऑन बोर्ड टू स्पॉन्सर समथिंग इन क्राइस्टचर्च।
1: जी, पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि आई थिंक के आने वाले चंद दिनों में शायद हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर है वो क्राइस्टचर्च आएंगे और हम उनसे मिल पाएंगे, क्योंकि वी वुड रियली वॉन्ट टू, क्योंकि ऐसे एक स्पॉन्सर जो टाइटल स्पॉन्सर ऑकलैंड से आया। अभी हम आपको एक बात बता देते हैं, जब हमने इनसे पहली बार रामायण के बारे में शेयर किया और हमारा विजन शेयर किया कि ये है हमारा विजन, जितने लोग रामायण में हैं वो लोग जानते हैं कि आपसे हम लोगों ने कोई ट्रेनिंग फीस नहीं लिया है या कोई बहुत चार्जेस नहीं लिया है। सो ऐसा एक इवेंट लाने के लिए बहुत एक्सपेंसेस होता है, बहुत खर्चा होता है, जितने लोग स्पेशली वहाँ आ रहे हैं उनको पता है। तो जब हम हमारे टाइटल स्पॉन्सर के पास गए थे, ये सोच के नहीं गए थे कि वो हमारे टाइटल स्पॉन्सर की तरह आएंगे, बस थोड़ा कुछ मदद कर रहे
0: हैं ना कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं,
1: शेयर करने के लिए कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे उन्होंने तुरंत कहा कि अगर ये रेडियो केजे लोकल का काम है, हम आपके काम पर विश्वास करते हैं एंड वी वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ रामायण, क्योंकि बचपन से मैं भी रामायण देखकर बड़ा हुआ हूँ।
0: बहुत प्यारा वाला वीडियो भी उन्होंने डाला
1: है। बहुत प्यारा वाला वीडियो उन्होंने खुद कर हमें भेजा भी है, हमें टैग भी किया है, आप लोगों ने देखा होगा, वो है एनजेड मोबाइल मॉर्गेज एंड इंश्योरेंस। एंड हम ये कहना चाहते हैं जब लोग ऐसे आके हमें सपोर्ट करते तो हमें वापस उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर आप भी मॉर्गेज के बारे में सोच रहे हो, रीफाइनेंसिंग के बारे में सोच रहे हो, इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हो, डू कॉन्टैक्ट एनजेड मोबाइल मॉर्गेज, कहो उनसे के रेडियो के जे लोकल में आपने उनका नाम सुना है एंड पता नहीं आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए हमारी तरफ से।
0: यस, ये हम आप लोगों से खास तौर पर से आग्रह करते हैं कि स्पेशली आप कहीं पर से भी है, डू गिव देम अ कॉल एंड चेक। क्या पता जैसे जीबीजी ने कहा है कि इंश्योरेंस शायद आपके पास अभी ऑलरेडी कोई है, बट यू माइट गेट अ बेटर ऑफर, जस्ट चेक। और जीबीजी आपके पापा जी सुगम मानो, पापा हाउ आर यू, हेलो टू यू एंड अम्मा,
1: आई विल रीड योर मैसेज सून पापा। लेकिन हम क्राइस्टचर्च में जो जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं क्विकली। जुलाई 25th को हो रहा है ब्लू रिबन लंच बाय सिनर्जी सिस्टर्स, हमारे चार सिस्टर्स जो है सीमा गौतम जी, शालिनी जी, हाँ सबसे नहीं बट सीमा गौतम जी, शालिनी जी, सुश्रुति जी, सीमा जी नहीं थी वहां पर, सुश्रुति जी एंड अपनी किसको भूल गई,
0: सुनीता जी,
1: सुनीता नहीं, आपने हमें कंफ्यूज कर दिया, सुनीता गौतम जी, शालिनी जी, सुश्रुति जी एंड सीमा गौतम जी, इन सब का सो वेल डन। और ब्लू रिबन लंच जो हो रहा है वो 25th ऑफ जुलाई को हो रहा है। जुलाई 26th को हो रहा है पहला गरबा इन क्राइस्टचर्च बाय ट्रियो एंटरटेनमेंट प्रेजेंट ऐश्वर्या मजबूदार गरबा नाइट, प्लीज डू नॉट बुक इट, मिस इट एंड बुक योर टिकट्स। August 8th को हो रहा है भजन क्लबिंग, August 22nd को जिस तरह हमने कहा हरियाली तीज, एंड September 19th को हो रहा है
0: शालिनी जी का हरियाली थी। यस, रामायण के लिए एक छोटा सा अमाउंट हम चार्ज इसलिए टिकट है क्योंकि जिस होल से हम कर रहे हैं अभी के जमाने में आपको पता है स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर आउटफिट्स लेने के बाद हर वीकेंड, अभी तो दो दिन हम होल बुक करते हैं वेंसडेज और संडेज को, ये होल ये सब एब्सोल्युटली फ्री है हमारे आर्टिस्ट के लिए, तो आकर वहां से प्रैक्टिस करने के, तो इसके एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई एक छोटा सा अमाउंट है, बट वी लव अगर आप आके हमें वापस सपोर्ट करें।
1: फ्री है, सिर्फ फ्री नहीं है एक्चुअली, परफॉर्मर से हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, सो
0: यू गाइस कैन अंडरस्टैंड,
1: सो वी हैव टू पे फॉर इट, सो होपफुली यू गाइस अंडरस्टैंड दैट। पापा जी का मैसेज आया ऑल द वे फ्रॉम केरला इंडिया, कह रहे आई सेंट यू अ लिंक रामायण भजन सॉन्ग, प्लीज एयर इट। श्योर पापा, डेफिनेटली एयर इट। ये देखो ये एक अलग सा मजा है, जिस तरह आप लोग सब जानते हैं हम है ईसाई धर्म से, हमारे पापा और मम्मी बहुत ही स्ट्रिक्ट क्रिश्चियंस हैं, तो अभी अभी हम इनमें थोड़ा सा चेंज देख रहे हैं जो हमें काफी
0: दमाद कहने से शायद हुआ है ना,
1: तो हमें काफी अच्छा लग रहा है जिस तरह पापा बोल रहे हैं कि रामायण का भजन सॉन्ग भेजा है। पापा आई रियली विश यू वर हियर टू वॉच द हार्ड वर्क दैट वी आर डूइंग एंड होपफुली विश यू वर हियर। ओह इमोशनल,
0: पापा लव्स में है ना।

0: आनंद जी कह रहे हैं जय सीताराम, सीताराम आपको भी, जिबी एंड क्रिश यू बोथ आर ऑसम, ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू बोथ इन दिस डिवाइन रामायण. थैंक यू सो मच प्रिया नारंग जी, एंड योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू अस. जिंसी एल्विन, वी आर गोना सी यू सून. मीरा मुदलियार जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं. सरिता सिंह जी, आप भी हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हैं. एंड शीतल पटेल
1: जी, हाँ प्रसाद, जितने लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे से आप सभी को हम याद कर लेते हैं. वैसे जितने लोग हैं, व्हाट्स कुकिंग, शायद आप लोगों ने ऑलरेडी खाना खा लिया होगा या कुछ प्लेन चल रहा है कि आज शायद संडे आपको चिल करना है तो टेक अवे कर लेंगे, या ऑलरेडी कुछ पका रही है किचन में खड़ी होकर आप हमारा शो का मजा ले रहे हैं. इसके साथ साथ हंडी में इनो प्याज के साथ जीरा सरसों ये छोड़कर ऑलरेडी आपने छौंक लगा दिया है, बस उसमें कोई एक करी जाने वाला है. तो जो भी आप कर रहे हैं आपको हम याद कर लेते हैं. आप हमें जरूर भी याद कीजिए, और हो सके तो हमें अपना जो डिश बता लीजिए. हम आप तक आ तो नहीं पाएंगे, पर यही हम इमेजिन करेंगे कि हम आपके साथ बैठकर इस डिनर का मजा ले रहे हैं. चले अगला गीत है, इसमें हम आप सभी को याद कर लेते हैं. ये गीत कल शाम को एक जगह पर हम सभी ने इस गीत का बड़ा ही मजा उठाया. आई होप यू गाइस आल्सो एंजॉयड. यू लिसनिंग टू रेडियो केजलो कॉलोनी ऑन
0: प्लेन्स मीडिया 96.9.

0: Welcome back to Radio KJ Local. आप सुन रहे हैं हमें Plains Media 96.9 पे. And this show is brought to you by NZ Mobile Mortgages and Insurance. If you're looking for mortgage, refinancing or insurance, contact NZ Mobile Mortgage.
1: Proudly supported by Silver Sponsors Maya Foods इनके साथ साथ RK Benchtops, our bronze sponsors Rare Property Management इनके साथ साथ supporting sponsors
0: Touch and Glow, Podichor, Anshu's Real Fruit Ice Cream, VR Construction, Blossom Dental and MC Care.
1: इसके साथ साथ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी पार्टनर्स जेके इमेजेस पीपी प्रोडक्शन सोशल मीडिया पार्टनर्स आईसीसी एंड डीएनजेड
0: मीडिया पार्टनर्स है प्लेन्स मीडिया एंड प्रिंट पार्टनर प्रिंट प्रो नीरव जानी जी
1: हाँ और ये सुंदर सा जो भजन आप सुन रहे थे इस भजन की फरमाइश ऑल द वे फ्रॉम केरला इंडिया से हमारे ससुर जी यानी जीवी जी के पापा जी इनकी तरफ से आए थे तो पापा जी आप भी हमारे साथ सुन रहे हैं और मम्मी आप भी अगर सुन रहे हैं आप दोनों को सुगम मानो एंड थैंक यू हमारे शो में जुड़ने के लिए सो दैट्स इट गाइज अनदर संडे प्रोग्राम हमने आज आपके साथ बहुत ही मजा किया और अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया हम आपसे मिलेंगे अब आने वाले फ्राइडे को तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दिस इज आरजे क्रिश साइनिंग ऑफ फ्रॉम प्लेन्स मीडिया स्टूडियोज विद द वेरी ब्यूटीफुल विद द वेरी गॉर्जियस
0: आरजे जीबी बाय और आप लोग जग्गी जी आपका मजाक भी देखो हम सीरियसली ले रहे थे आप ऐसे मजाक करते रहे